0: बिना इधर उधर देखे एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
1: एक मिनट
0: गो।
2: लापता हूँ ये बता तू
1: तुम हार गई।
0: अच्छा
3: मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने get out right now।
0: ना कुछ सिर्फ एक दिन के लिए।
1: कभी कभी एक दिन भी काफी होता है।

0: Reed? Apa tuh West Reed?
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर, वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जान मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: Reed? Apa tuh West Reed?
1: प्लीज मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो। हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए।
2: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया। समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। प्लीज शेखर, लेट मी गो।

0: सा से बाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठना बिटना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चा